0: रेडियो दिलबर कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: We're the station that really does play today's best music with 30 minutes all
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: We'll be back right after the commercial break.
2: تول مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم با دا هر کال پشان دا

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी वी, हु कुचरता द दग जवानको प वक्त बानी गम उनकलेशी, न प रारवान वक्त की दग जवानकी स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी। द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, तुम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा, तुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और ये वाज दाना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम मुकम्मल तो गबाने खत्म की पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन, कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी, कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही। नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई। द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.au।

0: Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ।
0: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। टोल मुसलमानों नु रुणता खुसूसी इतला इज्तिमा सीरत खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम बा दहर काल पशान दास लहुम मंजली की खपा अकीदत और एहतराम सरा अलसम सितंबर द जियारत पोरस और द जुमे वारे की पशपा बांधे जीर सरपरस्ती अबुल कासिम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अलीशाह बाचा से चिपदी इज्तिमा के वा दमक नुमोड़े उलमाए कराम और नात खानान बरख अखली चिपहरी की मेहमान खसूसी बई हजरत मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी से नौशहराना पीर मुफ्ती गौहर अलीशाह से चासदी तंगीना पीर कारी बशीर अहमद मदनी से पीर सबाक शरीफ नौशहराना लदीन अलावा मौलाना एहसानुल्लाह से पेखवरना और मौलाना फजल अली हक्कानी से और शेख मोहम्मद खान से चोटा लाहौर ना बखसूसी खिताब कई दे सरा सरा मशहूर नात खानान चिपकी जीशान हनफी मकबली जान से अयूब शाह से और नूर मजीद योशमार नात खानान ब नात खानी कवि बतास्तुल मुसलमान तख्वास्ते चिपसीरत खातम नबीन इज्तिमा के भरपूर दादात की शिरकत होके और सवाबदारैन हासिल करे जेर निगरानी सैयद मोहम्मद कासिम शाह बाचा से और मौलवी साबित शाह मजहरी से पता मदरसा खानका मियां डेरे सवाबे नुतास्तुल पकार दे चेदे फैजान ना फैस हासिल करे और बाकायदा तशरीफ उड़े मजीद मालूमात द पारा द मोबाइल शमेरा दा 0334-9040-877।
3: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुन ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा।

देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ ज्वानी द ज्वान पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा के तासु क्यों